0: रेडियो अमन, कभी नरम कभी गरम, म्यूजिक मस्ती और खूबसूरत पैगाम। हम लेके आएंगे मोहब्बत के एहसास का खूबसूरत अंदाज। रेडियो अमन, आपके मन का अमन। मन का अमन।
1: It's 8 o'clock.
0: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jean Ram Aman.

रेडियो अमन, कभी नरम कभी गरम। म्यूजिक, मस्ती और खूबसूरत पैगाम हम लेके आएंगे मोहब्बत के एहसास का खूबसूरत अंदाज। रेडियो अमन, आपके मन का अमन।

सो बिल्कुल जनाब जमुंग स्पेशली पठानकोट की गुलामीन दो कोर छे टोटल प्रोडक्ट्स मिला दी जी बिल्कुल ज्यादा मेहरबानी पर डबर चुन खान लला से रह मिला दी जी पास घर की शिदार की जमुंग स्पेशली मती उलाब से कम जमुंग डिर बहादुर पख्तून रोड जी द डिर मुंदी उस विच मंगे ते कालम ने रखड़े मंगे ते नस जो में रखड़े जमुंग और बजरे के लिए गिला हम दी खुजा सन सुमेले दीन इलावा पकोंडो कोट के जमुंग इब्राहिम भी सर मिलावी सी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जमुंग टोटल प्रोडक्ट्स बड़ी दुकान ने की अवेलेबल दी तासो लाड़सी और द टिकटॉक कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान वाले खास कर जमुंगा फेस वाश लक्ष्य दी जमुंगा फेस वाश युद्धा फेस वाश थी चाहत इंसान पर वजूद बाख बांधे स्पेशली फेस बांधे लाइटनेस रावली रेडनेस रावली व्हाइटनिंग रावली बिरुखल को क्रिमून इस्तेमाल करी पमख बांधे चिड़चिड़ापन रागरे देखो गुंज बंदी के रागरे दान अगर गुंज उस तरह खत्म किए गई स्पेशली लाइटनिंग के इसमें फेस वाश जिसकी रेड कलर फेस वाश थी टिकटॉक पर नाम बांधे उस तरह मना पे जोर से दा लेकिन रेड कलर फेस वाश थी सरम मना पे जोर दा बिरुखल फेस वाश थी खाम खास मंग फेस वाश इस्तेमाल की और खमिशद पारा अखपल जान खिस्त की जान खुले की और अखपल जान खल को तो रुखाए तो सो पूरी बता सो लोकल केमिकल क्रीमों भी इस्तेमाल हुई जमा दावेना मतलब दादी यू फिर जरूर टिकटॉक कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान इस्तेमाल की यू फिर जरूर जमुंगा टिकटॉक ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल की यू फिर जमुंगा स्किन पॉलिश इस्तेमाल की जमा अगरू नटांग की उसे की टांग द बेखंद उबूप वो जबान दी दी पस्तल उख्तू की स्पिन वाले राख ले दी द टांग द बेखंद उबूप वो जबान दी उख्त चुकम दी कमजोरी दी उख्त डेमेज हुई दी जमा खुंद अगर खुंद चुक जमा आवाज हो रही अवे सिर्फ भी मुंग उख्त बर्बाद हो तबाशो जमुंग दो उख्तो चुकम द डिर बीमारिया ने दी उख्त जमुंग सुकी सुना उख्तो की जमुंग हजार बीमारिया ने दी टांग आगे टोलो खुंद माचे डॉक्टर फिजान तासुल पारा स्पिनो उख्तो इलाज स्पिनो उख्तो इलाज चुकम रावड़े दे स्पिनो तू इलाज नहीं इलावा कस मासू कब आजोरी स्पेशली जबदागर तू है माँ चे खाईस दहर जिमी दहर लेकर मान दे आओ कचर तक बचाओ उख्तो बदरंग भी बचाओ उख्तो उगदेगी ना बल्कि सब बताऊँ है मच पर गारंटी से राज सो कम जमंगा टिकटॉक कलवन जी प्लस पीआरपी शैम्पू इस्तेमाल की या द मिक्स गिलमन शैम्पू इस्तेमाल की पर गारंटी से आयो फूट उख्तो और सर उगदेगी उख्तो और सर खुंदवर केगी उख्तो और सर मजेदर की जी नितासो द टोलो टांक वालो खल को चैलेंज यो फूट उख्त पर गारंटी सर उगद की अगर चुनके ची उख्ते कमजोरी लंडी दी और बदरंग गिरफ्तारी यो फिर इस्तेमाल की बयान नाजो नखरे कवे।

ओके जी बिल्कुल बस तासु हालात बदलेगी बिल्कुल बजी बदलेगी कुछ कले तासु इंतहाब ओके इंतहाब दिस ना कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान ओके तासु हालात बदलेगी सासु दे विख्तो जकची जमंग दिस ना कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह आगा ट्रस्टेबल प्रोडक्ट शामिल ली आगा क्वालिटी शामिल है आगा क्वांटिटी शामिल है जो के सुकुम दखपुल विख्तो नडीर जात परेशान है देर जात कलमन भी और अगी तरी जड़न भी मिलाओ शुवी अगी मुख्तलिफ शैम्पू और ऑयल इस्तेमाल करी दी बिल्कुल सेटिस्फाइड शिवी ने दी मुतमईन शिवी ने दी इज्जत और तन्न दे मिलाओ शिवे नो हिस परवाह हिस टेंशन।

0: आरजे सोनी फ्रॉम वाना, आरजे की आज का शो लायो है, ये तो आपको पता होगी कि आज लायो है कि नहीं।
1: हर लम्हा
0: जी अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम
0: व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मा सर सोग दियो दचरतना रहमतुल्ला गंडापुर द नवाबी किलने प्रोग्राम के हरकली स्टडी में शिफा खैर अली दर दवाई मां शुक्र शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तासु सरंगे तासु शे बराबर जोन मुशरवान दे
2: यार हम नवान दे बना होता प्रोग्राम ते मसूद अमान आसियु
0: आहा
2: मसूद रहमान मेरा खरा
0: जान ले नास्ती कसूक दर सर नास्ती
2: मसूद रहमान
0: से सिर्फ दो कसान ये
2: प्रोग्राम और
0: जय शुक्र दे शुक्र दे शुक्र दे
2: घंटे
0: समूंग द इस ना प्रोडक्ट इंतहाब का वही कहने का वही संग जी की दुकानों ने नश्ता
2: जी तो परचून दुकान में दिखाना है दुकानों ने सहला बता जी ओला बार पाल जी ओला बो तू तो वे
0: नुदा के अवेलेबल के कना अच्छा जी अच्छा जी खैर दादा का दुकानों की अवेलेबल कई अगी तासू है अगी बजान तरावड़ी ची कम दे समूह डिस्ट्रीब्यूटर हाजी दरबत खान से सर पठान की मौजूद दे अगी ले वर्तलेश और चिकम दे समूह दे इसना कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान इंतहाब तिकोलेश इनशाला जी इनशाला इनशाला ओके जी मेहरबानी वालेकुम अस्सलाम। टांग वाला खामोश के गई मैं कहना यार सुनन मैसेज नम गोरे कम दिखा आओ कहना।

आपकी हसने का यार गारे सोर का सिद्धि कई कोने का आपकी नजरों से जो गिरता है मर जाता है वो इस तरह तो आदमी खुद आदमी रहता नहीं साहिबे ईमान क्या

0: You are listening to Radio Amat Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: चाहतों के रंग अमन के संग अमन रेडियो 88.4 नेटवर्क।

0: बच्चों के रंग अमन के संग अमन रेडियो 88.4 नेटवर्क।
1: अब आपको मायारी इलाज के लिए कहीं भी दूर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब आपके शहर टांक में हर बीमारी का इलाज मौजूद है। मसलन पट्ठों का दर्द, जोड़ों का दर्द, बवासीर, खूनी वबादी, नवासीर, गुर्दे की पथरी, पित्ते की पथरी और इसके अलावा जनाना व मर्दाना पोशीदा अमराज का इलाज तसल्ली के साथ किया जाता है। तशरीफ लाएं सेहत होम्यो मेडिकल हॉस्पिटल, नूर मार्केट, पुराना डाकखाना गली, तंग बाजार, टांक। फोन नंबर 0331-66-32-231। शुक्रिया।

0: चाहतों के रंग अमन के संग अमन रेडियो 88.4 नेटवर्क।
1: जिंदगी में सुकून सेहत से जुड़ा होता है और जब इलाज कुदरती हो तो यकीन खुद बहुत बढ़ जाता है। इश्मा हर्बल ऑयल, कुदरत का इलाज, सुकून का एहसास और शफा का भरोसा। इश्मा हर्बल ऑयल कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करदा एक ऐसा ऑयल जो बेशुमार बीमारियों में मुफीद है, जैसा कि मैदे की तेजबियत, जलन, बदहजमी, बोक की कमी, कब्ज, दिल और गुर्दों की तकलीफ, जोड़ों और पट्टों के दर्द, सर दर्द, मुंह के चाले, ये सब तकलीफ अब खत्म, क्योंकि हल है सिर्फ और सिर्फ इश्मा हर्बल ऑयल। कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करदा ये शिफा बहश ऑयल जिस्म के अंदर और बाहर दोनों के लिए मुफीद। इश्मा हर्बल ऑयल, कुदरत का मुकम्मल इलाज, हर दर्द का आसान हल।
2: नो टेंशन राइस फेस वॉश कम चे सास मुख्तवर के खुला है सास्ता सु मखड़ी नरम मुलायम हगज मुफेंदी छी बाई छे दमा पो मखमदी दगुना तिर सरी दी या ददीन लवास्तर गुलांदी थोरी थोरी हलके जुड़ी शेवी दी आगे के वजह मु गड़ेरे ज्यादा परेशान यू तो बिल्कुल जी पो मार्केट के उस अवेलेबल दी नो टेंशन राइस फेस वॉश और सरा नो टेंशन फार्मूला क्रीम कम पैसे मास्टर अच्छे सास मुख बशी नरम मुलायम चमकदार और दस्तर गुलांदी थोरी थोरी हलके पा मुकमल तो गाल रिखे हुई छी बिल्कुल दो इंतजार खबर हम उस लार्ज शेप और मार्केट के नो टेंशन राइस फेस वॉश, नो टेंशन फार्मूला क्रीम और नो टेंशन ब्यूटी सो प्रवाह ले और इससे मालिक है रिजल्ट बताओ तो मिला भी नो बिल्कुल परेशान के गेमा और मार्केट की अवेलेबल दी नो टेंशन प्रोडक्ट्स जाने रवाह ले इससे मालिक है मैंने चीज़।

0: Forward.
1: Your music, your request.
2: This is Radio Station.
3: Radio Aman.
4: चाहतों के रंग अमन के संग अमन रेडियो 88.4 नेटवर्क
5: रेडियो अमन 88.4
0: 88.4
6: Welcome to Radio Aman 88.4.
7: Aman Radio 88.4.
8: Your station.
1: Your music. Your request.
2: This is Radio Station.
3: Radio Aman.
6: Welcome to Radio Aman 88.4.
4: चाहतों के रंग अमन के संग अमन रेडियो 88.4 नेटवर्क
7: Enjoy. Back to that music with

0: 88.4
1: आपका अपना रेडियो रेडियो 88.4 नेटवर्क
2: इल्म आगाही तंज मजा और खुशहालियों इस्तेहकाम का हसीन संगम आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 88.4 डॉट

0: चाहतों के रंग अमन के संग अमन रेडियो 88.4 नेटवर्क
1: योर म्यूजिक योर रिक्वेस्ट
2: दिस इज रेडियो स्टेशन रेडियो अमन।
3: It's 6 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
1: Your music, your request.
2: This is Radio Station. Radio Aman.
4: Rockin' with the band. 88.4

0: जो मरीज हैं कम से कम वो अपने मर्ज में
1: जी
0: रिलीफ ले और बेहतर महसूस करे।
1: जी जी।
0: तो बाकी शिफा अल्लाह की जानिब है,
1: जी
0: है
1: जी।
0: हर डॉक्टर हर हकीम की कोशिश होती है
1: जी
0: कि वो बेहतर से बेहतर करे। अब शिफा कब कहाँ कैसे
1: जी
0: ये अल्लाह की ज़ात जानती है, लेकिन मैंने भी अपनी छोटी सी कोशिश की है
1: जी जी।
0: और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह पाक इंशाल्लाह मायूस नहीं करेंगे
1: इंशाल्लाह जी। बड़ी मेहरबानी हकीम साहब, आपने अपने टाइम कीमती टाइम में से टाइम निकाला हमारे पास, हमारे स्टूडियो में आए। हमारे जो लिसनर हैं इस वक्त आपकी आवाज सुन रहे हैं, तो बिल्कुल आपका बहुत बड़ा बहुत शुक्रिया। ग्रहण और दुन को बिल्कुल तासो हकीम साहब नचो पुश्तना तपोस कवल गौड़ो अखपलो बीमारियों पाकला सियात पाकला नो बिल्कुल दे दे पारा तासो बिल्कुल हकीम साहब ता मुझा चिकम अल शिफा दवाखाने चिकम हेल्पलाइन नंबर दा हेल्पलाइन नंबर बिल्कुल हकीम साहब सर हर वक्त पखपला मौजूद भी तासो प्रोग्राम चे हम पदे नंबर बांधे कॉल कवले सो दिन अलावा प्रोग्राम न बाद हम कचोक हकीम साहब न चेहरे जनाना मर्दाना पोशीदा मराज या नोर दासे पटु मराजुन पबारे चे छ मालूमात कल ख्वाड़ी ने बिल्कुल तासो बचा नंबर नवी नोट करे दे अलशिफा दवाखाने चिकम हेल्पलाइन नंबर दान बिल्कुल तासो इकबल जान सर नोट को लंबर दा 0319-55-23-404 दे लंबर बने तासु बिल्कुल चिकम हम हकीम साहब ने पुछताना तपोस कवल गौड़ पदे लंबर बने तासु उस प्रोग्राम से बिल्कुल कॉल कवल है सो दिन अलावा कचो कॉल नसी कवल है कॉल न मिला वीजी या नेटवर्क बिजी भी मैं बिल्कुल तासो बे पदे लंबर बांधे मुश्ता मैसेज हम कवल है सो दिन अलावा मुझा स्टूडियो नंबर बांधे 0963-511-488 बन हम तासो बिल्कुल कॉल कवल है सो पदवाड़ो नंबर बांधे बिल्कुल तासो हकीम साहब न चिकम हम पुश्तना तपोस कवल गौड़ो बिल्कुल हकीम साहब तास दे पारा मौजूद तासो दे पुश्तनो जवाब न बताओस्ता मोबाइल पजरिए बने दर कई तासो बिल्कुल अखपल कोर न अखपल जीना चिकमदा हकीम साहब न पुश्तना तपोस कवल है सो हकीम साहब बिल्कुल तासुता योशवा मशवरा दर कई तासो इलाज पबारे चे तासो बिल्कुल पदवाड़ो नंबर बांधे हकीम साहब तकाल आओ चिकम कवल है सो दिन अलावा मुरा चिकम दे अलशिफा दवाखाने कम हेल्पलाइन नंबर द 0319-55-23-404 पदे नंबर बने बिल्कुल तासो मैसेज हम कवल है सो कछाओ कॉल न सी कवल है या कॉल न मिला वीर बिल्कुल तासो मैसेज हम कवल है सो दिन अलावा 0963-511-488 पदे नंबर बने हम बिल्कुल तासो मुश्ता कॉल कवल है सो हकीम साहब न चिकम हम तासो पूछता नहीं तासो बिल्कुल कवल है सो जी हकीम साहब माशाल्लाह टांक में आपका आज दूसरा तीसरा दिन
0: जी दूसरा दिन है।
1: अच्छा दूसरा दिन है तो टांक में आकर आप कैसे महसूस कर रहे हैं यहाँ का जो मौसम है वो तो मेरे ख्याल में पिंड इस्लामाबाद से थोड़ा गर्म
0: है
1: मुख्तलिफ है
0: गर्म तो है लेकिन वहाँ यह है कि आजकल क्योंकि सावन भादो है तो बारिशें चल रही हैं
1: जी जी
0: और यहाँ अभी तक खैर बारिशें का तो आसार कोई नजर नहीं आ रहे इसी वजह से जरा हबस भी है लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह कि चंद रोज बाद शायद इधर भी बारिशें हो जाएं
1: जी जी जी
0: और उससे मौसम में काफी तब्दीली आएगी। बाकी जहां तक है ओवरहॉल के जो मेरा थोड़ा सा फिरना हुआ या थोड़ा सा लोगों से मिलना हुआ
1: जी जी
0: तो ओवरहॉल के अच्छा तासुर आया है
1: जी जी
0: लोग इज्जत करते हैं मोहब्बत देते हैं
1: जी
0: और जाहिर बात है कि यही चीज इसी चीज की बंदा तलाश में होता
1: तलाश
0: है यार इज्जत में हो मोहब्बत मिले बाकी उम्मीद है कि और अल्लाह ताला से दुआ सिर्फ इतनी है अब कि मैं यहाँ के लोगों की तवक्कात पे पूरा उतरूं
1: जी जी बिल्कुल
0: तो अल्लाह ताला मुझे इस काबिल करे और जो मेरी यकीन सी कोशिश होगी उसमें मुझे कामयाब करे
1: बिल्कुल
0: और मैं चाहूंगा कि जो हमारे लिसनर हैं
1: जी
0: वो भी मेरे लिए दुआगो हों
1: इंशाल्लाह
0: तो अल्लाह पाक मुझे इस काबिल करे
1: जी
0: कि मैं जो एक एक एम है
1: जी जी
0: यार मैं ये करूं तो वो कम अज कम खिदमत हो सके
1: खिदमत हो सके जी बिल्कुल हकीम साहब यहाँ के जो लोग हैं वो माशाल्लाह मोहब्बत देने वाले लोग हैं और आप चूंकि रावलपिंडी पिंड इस्लामाबाद से वो ताल्लुक रखते हैं तो वहां पे ज्यादा अफरा तफरी होती है।

मैं हूँ असमा नूर वजीर फ्रॉम मंगल मेला। मैंने अपने बालों के लिए कई शैम्पू आजमाए लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला। फिर मैंने अमन रेडियो करक पर इकराम मामू का प्रोग्राम सुना। उन्होंने एश्मा आनियन शैम्पू के बारे में बात की। जब मैंने मंगवाया और इस्तेमाल किया, माशाल्लाह उसने मुझे कमाल का रिजल्ट दिया। मैं सब बहन भाइयों को ये मशवरा देती हूँ कि अगर आप लोग अपने बाल मजबूत और सेहतमंद बनाना चाहते हो तो आज ही अपने करीबी दुकानदार से एश्मा आनियन शैम्पू मंगवाए। एश्मा आनियन शैम्पू सेहतमंद और